श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं जो गुजरात के कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने समझ रहे जो अधिकारी पूरी कोशिश करी है रात ना 8-10 कलाके 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। एक जवाब है वो चाहे अटपट खाना नो काड़ू तड़ाव भैरू पानी काड़ू तड़ाव भैरू पानी एमा नाचे ढिगली राणी। खोटो जवाब छे। खोटो जवाब छे, फिश पॉन्ड नथी ना। आम विचार सारो छे, काड़ू तड़ाव। हाँ, फिश पॉन्ड नी अंदर बारे ओलू काड़ू होय छे, बराबर छे। एमा भैरू पानी ई पण वात साची छे। અને એમાં નાચે ઢીંગલી રાણી, ત્યાં જરાક ફેરફાર છે। અચ્છા, ફરી પાછા કોશિશ કરજો। આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા 102.8 એફએમ ઉપર યા તો www.divasfm.com ઉપર। સ્ટુડિયોનો નંબર છે 0756686686863। આપની કોઈ ફરમાશ હોય તો ચોક્કસ અમને વોટ્સએપ કરી શકો છો।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। जोशी साहब, आपनु जे ओखाणा नु वर्णन हतु अद्भुत केवू पड़े है। अने तमने गीतो पण सांभळे छे, मने खबर छे रातना केटला वायगा छे त्यां देशमां, है आटलू मोड़ू थई गयू छे, पण तमारो जे प्रेम भाव छे गीतमाला सांभळवानो ते बदल खूब खूब धन्यवाद। आवी ज रीते घणा सांभळता होय छे, पण व्हाट्सअप करो ने कोक दिवस, है ने शर्माता ने 0756868683 क्यांथी सांभळो छो, शू सांभळी रह्या छो, केटला वखतथी सांभळी रह्या छो, है ने गीतमाला आपनी माटे छे। आप सांभळी रह्या छो गीतमाला 102.8 एफएम ऊपर या तो www.divasfm.com ऊपर। काळू तळाव भैरू पाणी एमा नाचे ढींगली राणी, आ छे अटપટ ઓખાણો, બીજો અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું, આજે જવાબ આપી જ દેવો પડશે, ઘણા કારણો છે એની પાછળ। આપ સાંભળી રહ્યા છો ગીતમાળા, કારણ કે દિલની વાત તો કેરવી જ પડે ને।